0: मेरा सौदो सत्यन चुटुंग झरी मेरा जैथा दुख कहीं नहीं सारा इससे ही भरी
1: आधार स्वर्ग खंपानी छ आधार स्वर्ग दीदो मरने बाजने